0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमनितास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में धर्मग्रंथ की दो निशानियों, बाबेल के मीनार और यरूशलेम के दीवार के निर्माण की चर्चा की। इन दोनों निशानियों के प्रकाश में पवित्र आत्मा हमें तकनीकी और डिजिटल क्रांति के संग हमारे संबंध को देखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक खोजों को हम दक्षताओं के रूप में पाते हैं जो मानवता को दिए गए हैं, जिससे वे हमारे लिए फलदायक हो सकें। तकनीकी में हम चंगाई, जुड़े रहने, शिक्षित करने और हमारे सामान्य निवास की सुरक्षा को पाते हैं, लेकिन यह हमें विभाजित, विखंडित और एक तरह से नए अन्याय का शिकार भी बना सकती है। अमूर्त रूप में तकनीकी स्वयं अपने में मानवीय समस्याओं का एक समाधान नहीं है, जैसे कि यह अपने में स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है। प्रायोगिक रूप में यद्यपि तकनीकी अपने में कभी उदासीन नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के अनुरूप कार्य करती है जो उसका उपयोग और उसका संचालन करते हैं। अतः पहला चुनाव तकनीकी के लिए हाँ या नहीं के बीच नहीं है, बल्कि बाबेल बनाने या यरूशलेम का निर्माण फिर से करने के बीच है, एक ऐसी ताकत के बीच जो स्वर्ग पर राज करने का दावा करती है, और ऐसे लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति, जिससे भ्रातृत्व में एक साथ मिलकर रहने के लिए दीवारों को फिर से बनाने हेतु मिलकर काम किया जा सके। श्रोताओं, इस भांति हमें चाहिए कि हम बाबेल निशानियों को दूर करें, मुख्यतः लाभ कमाने की चाह, जिसके कारण कमजोरों की आहुति होती है, एक एक रूपता जो उदासीनता उत्पन्न करती है, और ढोंग जो एक भाषा है, यहाँ तक कि एक डिजिटल भी, जो सभी चीजों को परिभाषित कर सकती है, जिसमें हम मानव के रहस्य, आंकड़ों और कार्य क्षमताओं को भी पाते हैं। अमानवीयकरण की जोखिम एक भविष्य का निर्माण जो ईश्वर को अलग कर देता और दूसरों को सिर्फ एक साधन स्वरूप देखता है, एक प्राचीन और सदैव नया प्रलोभन है, आज एक तकनीकी के भेष में आती है। इसके बदले आइए हम नेहमिया के मार्ग का चुनाव, नबी नेहमिया के मार्ग का चुनाव करें, जो हमारे लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है, जहां हम निर्वासन से पुनः लौटते हुए ईश्वर के एक शहर का निर्माण करते हैं। आज पुनर्निर्माण करने का अर्थ है यह पहचानना कि अलग अलग आवाजों और नजरियों से, जो कभी कभी हमें बोली जाने वाली भाषाओं में भ्रमित होने की याद दिलाती है, एक अच्छी संभावना को हमारे लिए लेकर आती है। वास्तव में यह एक साथ निर्माण करने की संभावना उत्पन्न करती है, जहां हम विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे सुनने और वार्ता का माध्यम बना सकते हैं, जिसके द्वारा न्याय और भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस साझा कार्य में ख्रिस्तीय अपने ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाले अद्वितीय कार्य की खोज करते हैं, जिससे उनकी ज्योति में बहुसंख्यक विभाजन का कारण नहीं बनता, बल्कि सिनोडालिटी के अभ्यास द्वारा एक स्थल बनता है, जहां मानवता अपने ठोस आधार शिलाओं और अंतिम लक्ष्य की पुनः खोज कर सकती है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में संत योहन नए यरूशलेम को देखते हैं, जो स्वर्ग से ईश्वर की ओर से उतरता है। यह सारी मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है, और कृपा का यह दृश्य हम ख्रिस्तियों के लिए एक निमंत्रण है, एक साथ मिलकर कार्य करने का, जिससे हम आज के शहरों में शांति, न्याय और समुदाय में सम्मानजनक जीवन की स्थापना कर सकें। श्रोताओं, जन सामान्य के हित में स्थापित एक शहर का अर्थ हमारे लिए सर्वप्रथम ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने की बात को समाहित करता है। इसका अर्थ इस बात को पहचानना है कि उनके प्रेम की सच्चाई हमें जीवन के लिए निमंत्रण देती है, हम सारी चीजों में पूर्णता को प्राप्त करें और उनके संग एकता में बने रहें, जैसे कि संत अगुस्टिन कहा करते थे और हम भी कह सकते हैं, तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय तब तक व्याकुल हैं जब तक वे तुझ में आराम ना करें। वास्तव में ईश्वर ने हमारे हृदयों में खुशी की चाह को गढ़कर रखा है, जो हमारे जीवन के सारे आयामों का आलिंगन करता है। कलीसिया हमारे समय के नर और नारियों से वार्ता करते हुए इस चाह को पहचानती और इसकी गहरी आवश्यकता को आवश्यक रूप में निर्देशित और सुरक्षित रखती है। दूसरी बात, संत पापा कहते हैं, जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करने का अर्थ हमारे लिए यह है कि हम मानवता की कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करें, उन्हें बिना किसी गलती के रूप में देखें जिसे सुधार की जरूरत हो। आज मानवता में पूर्ण जीवन की चाह अपने में एक जोखिम की स्थिति में जान पड़ती है, जो गलत लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती, जैसे कि तकनीकी की संभावना, जो हमें सारी कमियों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करती है, और हितकारी शैलियां, जो सारी जनता को पीछे छोड़ देती है। अक्सर हम अपनी आशा को असीमित अपग्रेड में बनाए रखते हैं, विकास के स्वरूप में जो असमानताओं को बढ़ाती है, और ऐसे तुरंत समाधान में जो लोगों के जख्मों को भरने में नाकामयाब होते हैं। इसका परिणाम यह होता है, कुछ लोग अपने को स्वयं को स्थापित करने की असीमित धुन में खोए रहते, तो वहीं बहुतों को जरूरी आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। कलीसिया हमें याद दिलाती है एक दृढ़ता में, वहीं नम्र वचनों में, कि सच्ची परिपूर्णता कमजोरियों को खत्म करने में प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि यह शांतिमय विकास में होता है। यह उस परिस्थिति में पाई जाती है जहां स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के ताने बाने बनते हैं, जिसे हम आपसी सेवा और सच्ची एकता में प्राप्त करते हैं, और जहां विकास का मापदंड हर व्यक्ति के सम्मान और हर किसी की भलाई में निहित है। तीसरा, एक दुनिया का निर्माण जिसमें हर किसी का विकास होता है, अपने में साझा उत्तरदायित्व और साहस की मांग करती है। कोई भी अकेला अपने में दुनिया के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बोझ को वहन नहीं कर सकता है। उसी भांति कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि वह अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता हो, क्योंकि शक्ति की श्रेष्ठता को हम कमजोरी में पाते हैं। हर किसी को अपने हिस्से की दीवार मिली है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और विधायकों, नागर अधिकारियों, विख्यात आंदोलन और विश्वासी समुदाय को। यह हमारे लिए पूरकता का तर्क है, जो पीढ़ियों, लोगों, अनुशासन और संस्कृति के बीच सहभागिता के मूल्य को महत्व देता है, जिसके माध्यम समाज में खुशहाली, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। हम तनाव या विभिन्नताओं से ना घबराएं, क्योंकि वे हमारे लिए सृजनात्मक शक्तियां बनती हैं। जब हम साझा उत्तरदायित्व से अपने को निर्देशित होने देते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने सोमवार को इटली के मोंते कैसिनो मठ का दौरा किया और मठवासी समुदाय से मुलाकात की एवं संत बेनेडिक्ट की कब्र पर शांति के लिए प्रार्थना की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संत पापा ने संत बेनेडिक्ट की कब्र पर मौन प्रार्थना करते हुए शांति के लिए प्रार्थना की, खासकर दुनिया के उन जगहों के लिए जहां हिंसा एवं युद्ध हो रहे हैं। उन्होंने वहां धम्मसंघी समुदाय के साथ दोपहर का भोजन किया और बाद में कस्तेल गंदोल्फो लौटे, जहाँ वे 27 जुलाई तक अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे हैं। मोंते कैसिनो का मठ रोम से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और यह बेनेडिक्टाइन ऑर्डर का पहला मठ है, जिसका निर्माण खुद संत बेनेडिक्ट ने 529 ईस्वी में किया था। 15 फरवरी 1944 को मोंते कैसिनो मठ लड़ाई के दौरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, जब मित्र देशों की सेनाओं ने गलती से मान लिया था कि इस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतालवी सरकार से मिले फंड से इसे फिर बनाया गया। इसे 1964 में पोप पॉल षष्ठम ने फिर से प्रतिष्ठापित किया। आज मठ में एक छोटा बेनेडिक्टान समुदाय है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों का स्वागत करता है। पास ही में कैसिनो युद्ध कब्रस्थान है, जहां 4000 से ज्यादा सैनिकों की कब्रें हैं। मठ के पास ही पोलिश कब्रस्थान भी है, जहां 1072 पोलिश सैनिकों की कब्रें हैं। 10 दिन पहले इसी जगह पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मलबे में बदल गई थी और युद्ध की तबाही की हमेशा रहने वाली निशानी है, 2026 का पाचिस नॉन्सियस पुरस्कार यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जा बाला को दिया गया था। वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने पोप लियो 14वें की एक नई किताब प्रकाशित की, जिसका शीर्षक है निरस्त्रीकृत एवं निरस्त्रीकरण, शांति एक उपहार। अलेसांद्रो बैनफी द्वारा संपादित यह खंड 8 मई 2025 को पोप लियो 14वें के चुनाव के बाद से उनके भाषणों एवं शांति पर उनके चिंतन को एक साथ लाता है। यह संकलन जो इटालियन में है, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगा, पोप के पहले से अप्रकाशित लेख से शुरू होता है। तुम्हें शांति मिले या पुनर्जीवित यीशु का अपने शिष्यों को पहला अभिवादन था, शांति का पहला उपहार जिसको पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों और पूरी दुनिया को दिया है। लेकिन यह उपहार सस्ता नहीं है। नाजरेत के गुरु के महिमान्वित शरीर पर दुख के घाव दिखे। उन्होंने नफरत, हिंसा और दुनिया की सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव किया। निहत्था और बिना हथियार के यीशु अन्याय सहे और जी उठे। सुसमाचार की घोषणा इतिहास में खुद को शामिल करती है और शामिल करती रहेगी, आज भी 2000 साल पहले के समान। शांति का यह महान अभिलाषा जो कई दिलों को झकझोरती है, लेकिन इसे अक्सर धमकी भी दी जाती है, कुचला जाता है और उपहास का पात्र बनाया जाता है। आज लगभग 103 राष्ट्र किसी न किसी तरह पृथ्वी पर युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में, मध्य पूर्व में, सूडान में, म्यांमार में, यमन, कोंगो और कई अन्य जगहों पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लोग मर रहे हैं। पोप लिखते हैं, अपने समय में मेरे प्रिय पूर्वाधिकारी संत पापा फ्रांसिस ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से व्यापक संघर्ष की स्थिति का वर्णन करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध टुकड़ों में कहावत गढ़ी है। इस विषय पर अपने संबोधन को देखते हुए, जो अब इस संकलन में संकलित है, मैं कुछ पहलुओं को रेखांकित करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब हैं। आगे पोप लिखते हैं, सबसे बढ़कर शांति एक जिम्मेदारी है। यदि किसी समस्या का सामना करने, तनाव का अनुभव करने या अपमानित होने पर हमारी पहली प्रवृत्ति दूसरों का न्याय करने, आरोप लगाने और उनकी निंदा करने की होती है, तो निश्चय ही पहले उदासीनता और फिर हमारे चारों ओर घृणा बढ़ेगी। वास्तविकता को देखने का एक तरीका है जो नष्ट करता है और निर्माण नहीं करता। इसके बजाय हमें देखना चाहिए कि शांति मुझसे शुरू होती है या हमसे शुरू होती है। संत अगस्तीन कहते हैं, समय परेशान है, समय कठिन है, समय दयनीय है। अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन जीकर आप समय को बदल देंगे। आप समय को बदल सकते हैं
और फिर आपके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा। हम दुनिया के शक्तिशाली लोगों से शांति की मांग नहीं कर सकते यदि हम इसे स्वयं जीना शुरू नहीं करते हैं। अपने दैनिक जीवन के रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों और कार्यस्थलों में शांति रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है, जैसे मुस्कान, चोट माफ करने और अच्छा शब्द कहने से। एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने 20 जुलाई को जकार्ता में अपनी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया और इस महासभा को कलीसिया के सिनोडल एवं मिशनरी नवीनीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए धर्मदक्ष मार्सेलिनो एंटोनियो मारालिट जूनियर ने एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ की शुरुआत और इसके मिशन को याद किया। उन्होंने बताया कि संघ दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व एवं मध्य एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों और कलीसिया के अधिकार क्षेत्रों का एक स्वयंसेवक संघ है। इससे 1970 में संत पापा पॉल षष्ठम ने मनीला दौरे के दौरान एशिया धर्मदक्षों की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद निर्मित किया था, जबकि इसके नियमों को 1972 में वैटिकन ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि 5 दशकों से ज्यादा समय से FABC ने धर्मदक्षों को दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में से एक में कलीसिया के मिशन पर एक साथ विचार करने के लिए एक मंच दिया है। इसने स्थानीय कलीसियाओं के बीच एकता एवं सहयोग को बढ़ावा दिया है, साथ ही सुसमाचार का प्रचार, दूसरे धर्मों के साथ बातचीत, धार्मिक सोच, सामाजिक जुड़ाव, मानव विकास और सामाजिक बातचीत को बढ़ावा दिया है और इस इलाके में आमतौर पर आने वाली प्रेरिता से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है। यह महासभा आमतौर पर 4 साल में बुलाई जाती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदहवें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में धर्मग्रंथ की दो निशानियों, बाबेल के मीनार और यरूशलेम के दीवार के निर्माण की चर्चा की। इन दोनों निशानियों के प्रकाश में पवित्र आत्मा हमें तकनीकी और डिजिटल क्रांति के संग हमारे संबंध को देखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक खोजों को हम दक्षताओं के रूप में पाते हैं जो मानवता को दिए गए हैं, जिससे वे हमारे लिए फलदायक हो सकें। तकनीकी में हम चंगाई, जुड़े रहने, शिक्षित करने और हमारे सामान्य निवास की सुरक्षा को पाते हैं, लेकिन यह हमें विभाजित, विखंडित और एक तरह से नए अन्याय का शिकार भी बना सकती है। अमूर्त रूप में तकनीकी स्वयं अपने में मानवीय समस्याओं का एक समाधान नहीं है, जैसे कि यह अपने में स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है। प्रायोगिक रूप में यद्यपि तकनीकी अपने में कभी उदासीन नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के अनुरूप कार्य करती है जो उसका उपयोग और उसका संचालन करते हैं। अतः पहला चुनाव तकनीकी के लिए हाँ या नहीं के बीच नहीं है, बल्कि बाबेल बनाने या यरूशलेम का निर्माण फिर से करने के बीच है, एक ऐसी ताकत के बीच जो स्वर्ग पर राज करने का दावा करती है, और ऐसे लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति, जिससे भ्रातृत्व में एक साथ मिलकर रहने के लिए दीवारों को फिर से बनाने हेतु मिलकर काम किया जा सके। श्रोताओं, इस भांति हमें चाहिए कि हम बाबेल निशानियों को दूर करें, मुख्यतः लाभ कमाने की चाह, जिसके कारण कमजोरों की आहुति होती है, एक एक रूपता जो उदासीनता उत्पन्न करती है, और ढोंग जो एक भाषा है, यहाँ तक कि एक डिजिटल भी, जो सभी चीजों को परिभाषित कर सकती है, जिसमें हम मानव के रहस्य, आंकड़ों और कार्य क्षमताओं को भी पाते हैं। अमानवीयकरण की जोखिम, एक भविष्य का निर्माण जो ईश्वर को अलग कर देता और दूसरों को सिर्फ एक साधन स्वरूप देखता है, एक प्राचीन और सदैव नया प्रलोभन है, आज एक तकनीकी के भेष में आती है। इसके बदले आइए हम नेहमिया के मार्ग का चुनाव, नबी नेहमिया के मार्ग का चुनाव करें, जो हमारे लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है, जहां हम निर्वासन से पुनः लौटते हुए ईश्वर के एक शहर का निर्माण करते हैं। आज पुनर्निर्माण करने का अर्थ है यह पहचानना कि अलग अलग आवाजों और नजरियों से, जो कभी कभी हमें बोली जाने वाली भाषाओं में भ्रमित होने की याद दिलाती है, एक अच्छी संभावना को हमारे लिए लेकर आती है। वास्तव में यह एक साथ निर्माण करने की संभावना उत्पन्न करती है, जहां हम विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे सुनने और वार्ता का माध्यम बना सकते हैं, जिसके द्वारा न्याय और भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस साझा कार्य में ख्रिस्तीय अपने ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाले अद्वितीय कार्य की खोज करते हैं, जिससे उनकी ज्योति में बहुसंख्यक विभाजन का कारण नहीं बनता, बल्कि सिनोडालिटी के अभ्यास द्वारा एक स्थल बनता है, जहां मानवता अपने ठोस आधार शिलाओं और अंतिम लक्ष्य की पुनः खोज कर सकती है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में संत योहन नए यरूशलेम को देखते हैं, जो स्वर्ग से ईश्वर की ओर से उतरता है। यह सारी मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है, और कृपा का यह दृश्य हम ख्रिस्तियों के लिए एक निमंत्रण है, एक साथ मिलकर कार्य करने का, जिससे हम आज के शहरों में शांति, न्याय और समुदाय में सम्मानजनक जीवन की स्थापना कर सकें। श्रोताओं, जन सामान्य के हित में स्थापित एक शहर का अर्थ हमारे लिए सर्वप्रथम ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने की बात को समाहित करता है। इसका अर्थ इस बात को पहचानना है कि उनके प्रेम की सच्चाई हमें जीवन के लिए निमंत्रण देती है, हम सारी चीजों में पूर्णता को प्राप्त करें और उनके संग एकता में बने रहें, जैसे कि संत अगुस्टिन कहा करते थे और हम भी कह सकते हैं, तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय तब तक व्याकुल हैं जब तक वे तुझ में आराम ना करें। वास्तव में ईश्वर ने हमारे हृदयों में खुशी की चाह को गढ़कर रखा है, जो हमारे जीवन के सारे आयामों का आलिंगन करता है। कलिस्य हमारे समय के नर और नारियों से वार्ता करते हुए इस चाह को पहचानती और इसकी गहरी आवश्यकता को आवश्यक रूप में निर्देशित और सुरक्षित रखती है। दूसरी बात, संत पापा कहते हैं, जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करने का अर्थ हमारे लिए यह है कि हम मानवता की कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करें, उन्हें बिना किसी गलती के रूप में देखें जिसे सुधार की जरूरत हो। आज मानवता में पूर्ण जीवन की चाह अपने में एक जोखिम की स्थिति में जान पड़ती है, जो गलत लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती, जैसे कि तकनीकी की संभावना, जो हमें सारी कमियों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करती है, और हितकारी शैलियां, जो सारी जनता को पीछे छोड़ देती है। अक्सर हम अपनी आशा को असीमित अपग्रेड में बनाए रखते हैं, विकास के स्वरूप में जो असमानताओं को बढ़ाती है, और ऐसे तुरंत समाधान में जो लोगों के जख्मों को भरने में नाकामयाब होते हैं। इसका परिणाम यह होता है, कुछ लोग अपने को स्वयं को स्थापित करने की असीमित धुन में खोए रहते, तो वहीं बहुतों को जरूरी आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। कलिसिया हमें याद दिलाती है एक दृढ़ता में, वहीं नम्र वचनों में, कि सच्ची परिपूर्णता कमजोरियों को खत्म करने में प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि यह शांतिमय विकास में होता है। यह उस परिस्थिति में पाई जाती है जहां स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के ताने बाने बनते हैं, जिसे हम आपसी सेवा और सच्ची एकता में प्राप्त करते हैं, और जहां विकास का मापदंड हर व्यक्ति के सम्मान और हर किसी की भलाई में निहित है। तीसरा, एक दुनिया का निर्माण जिसमें हर किसी का विकास होता है, अपने में साझा उत्तरदायित्व और साहस की मांग करती है। कोई भी अकेला अपने में दुनिया के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बोझ को वहन नहीं कर सकता है। उसी भांति कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि वह अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता हो, क्योंकि शक्ति की श्रेष्ठता को हम कमजोरी में पाते हैं। हर किसी को अपने हिस्से की दीवार मिली है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और विधायकों, नागर अधिकारियों, विख्यात आंदोलन और विश्वासी समुदाय को। यह हमारे लिए पूरकता का तर्क है, जो पीढ़ियों, लोगों, अनुशासन और संस्कृति के बीच सहभागिता के मूल्य को महत्व देता है, जिसके माध्यम समाज में खुशहाली, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। हम तनाव या विभिन्नताओं से ना घबराएं, क्योंकि वे हमारे लिए सृजनात्मक शक्तियां बनती हैं। जब हम साझा उत्तरदायित्व से अपने को निर्देशित होने देते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने सोमवार को इटली के मोंते कैसिनो मठ का दौरा किया और मठवासी समुदाय से मुलाकात की एवं संत बेनेडिक्ट की कब्र पर शांति के लिए प्रार्थना की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संत पापा ने संत बेनेडिक्ट की कब्र पर मौन प्रार्थना करते हुए शांति के लिए प्रार्थना की, खासकर दुनिया के उन जगहों के लिए जहां हिंसा एवं युद्ध हो रहे हैं। उन्होंने वहां धम्मसंघी समुदाय के साथ दोपहर का भोजन किया और बाद में कस्तेल गंदोल्फो लौटे, जहाँ वे 27 जुलाई तक अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे हैं। मोंते कैसिनो का मठ रोम से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और यह बेनेडिक्टाइन ऑर्डर का पहला मठ है, जिसका निर्माण खुद संत बेनेडिक्ट ने 529 ईस्वी में किया था। 15 फरवरी 1944 को मोंते कैसिनो मठ लड़ाई के दौरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, जब मित्र देशों की सेनाओं ने गलती से मान लिया था कि इस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतालवी सरकार से मिले फंड से इसे फिर बनाया गया। इसे 1964 में पोप पॉल षष्ठम ने फिर से प्रतिष्ठापित किया। आज मठ में एक छोटा बेनेडिक्टान समुदाय है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों का स्वागत करता है। पास ही में कैसिनो युद्ध कब्रस्थान है, जहां 4000 से ज्यादा सैनिकों की कब्रें हैं। मठ के पास ही पोलिश कब्रस्थान भी है, जहां 1072 पोलिश सैनिकों की कब्रें हैं। 10 दिन पहले इसी जगह पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मलबे में बदल गई थी और युद्ध की तबाही की हमेशा रहने वाली निशानी है, 2026 का पाचिस नॉन्सियस पुरस्कार यरूशलेम के लैटिन प्राधिकरणाध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पित्साबाला को दिया गया था। वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने पोप लियो 14वें की एक नई किताब प्रकाशित की, जिसका शीर्षक है निरस्त्रीकृत एवं निरस्त्रीकरण, शांति एक उपहार। अलेसांद्रो बैनफी द्वारा संपादित यह खंड 8 मई 2025 को पोप लियो 14वें के चुनाव के बाद से उनके भाषणों एवं शांति पर उनके चिंतन को एक साथ लाता है। यह संकलन जो इटालियन में है, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगा, पोप के पहले से अप्रकाशित लेख से शुरू होता है। तुम्हें शांति मिले या पुनर्जीवित येसु का अपने शिष्यों को पहला अभिवादन था। शांति का पहला उपहार जिसको पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों और पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन यह उपहार सस्ता नहीं है। नाजरेत के गुरु के महिमान्वित शरीर पर दुख के घाव दिखे। उन्होंने नफरत, हिंसा और दुनिया की सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव किया। निहत्था और बिना हथियार के येसु अन्याय सहे और जी उठे। सुसमाचार की घोषणा इतिहास में खुद को शामिल करती है और शामिल करती रहेगी, आज भी 2000 साल पहले के समान। शांति का यह महान अभिलाषा जो कई दिलों को झकझोरती है, लेकिन इसे अक्सर धमकी भी दी जाती है, कुचला जाता है और उफास का पात्र बनाया जाता है। आज लगभग 103 राष्ट्र किसी न किसी तरह पृथ्वी पर युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में, मध्य पूर्व में, सूडान में, म्यांमार में, यमन, कोंगो और कई अन्य जगहों पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लोग मर रहे हैं। पोप लिखते हैं, अपने समय में मेरे प्रिय पूर्वाधिकारी संत पापा फ्रांसिस ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से व्यापक संघर्ष की स्थिति का वर्णन करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध टुकड़ों में कहावत गढ़ी है। इस विषय पर अपने संबोधन को देखते हुए, जो अब इस संकलन में संकलित है, मैं कुछ पहलुओं को रेखांकित करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब हैं। आगे पोप लिखते हैं, सबसे बढ़कर शांति एक जिम्मेदारी है। यदि किसी समस्या का सामना करने, तनाव का अनुभव करने या अपमानित होने पर हमारी पहली प्रवृत्ति दूसरों का न्याय करने, आरोप लगाने और उनकी निंदा करने की होती है, तो निश्चय ही पहले उदासीनता और फिर हमारे चारों ओर घृणा बढ़ेगी। वास्तविकता को देखने का एक तरीका है जो नष्ट करता है और निर्माण नहीं करता। इसके बजाय हमें देखना चाहिए कि शांति मुझसे शुरू होती है या हमसे शुरू होती है। संत अगस्तीन कहते हैं, समय परेशान है, समय कठिन है, समय दयनीय है। अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन जीकर आप समय को बदल देंगे। आप समय को बदल सकते हैं
और फिर आपके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा। हम दुनिया के शक्तिशाली लोगों से शांति की मांग नहीं कर सकते यदि हम इसे स्वयं जीना शुरू नहीं करते हैं। अपने दैनिक जीवन के रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों और कार्यस्थलों में शांति रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है, जैसे मुस्कान, चोट माफ़ करने और अच्छा शब्द कहने से। एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने 20 जुलाई को जकार्ता में अपनी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया और इस महासभा को कलीसिया के सिनोडल एवं मिशनरी नवीनीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए धर्मदक्ष मार्सेलिनो एंटोनियो मारालिट जूनियर ने एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ की शुरुआत और इसके मिशन को याद किया। उन्होंने बताया कि संघ दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व एवं मध्य एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों और कलीसिया के अधिकार क्षेत्रों का एक स्वयंसेवक संघ है। इससे 1970 में संत पापा पॉल षष्ठम ने मनीला दौरे के दौरान एशिया धर्मदक्षों की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद निर्मित किया था, जबकि इसके नियमों को 1972 में वैटिकन ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि 5 दशकों से ज़्यादा समय से FABC ने धर्मदक्षों को दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में से एक में कलीसिया के मिशन पर एक साथ विचार करने के लिए एक मंच दिया है। इसने स्थानीय कलीसियाओं के बीच एकता एवं सहयोग को बढ़ावा दिया है, साथ ही सुसमाचार का प्रचार, दूसरे धर्मों के साथ बातचीत, धार्मिक सोच, सामाजिक जुड़ाव, मानव विकास और सामाजिक बातचीत को बढ़ावा दिया है और इस इलाके में आम तौर पर आने वाली प्रेरिता से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है। यह महासभा आम तौर पर 4 साल में बुलाई जाती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: अमृत होकर करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पास

0: तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं।
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है।
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, बुधवार के कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत कला एवं सुंदरता के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
1: La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: संगीत कला एवं सुंदरता मनोरंजन के अच्छे माध्यम हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। ये हमें ईश्वर की ओर एवं मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कस्तिल गंदोल्फो में पोप लियो 14वें के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अल्बानो धर्म प्रांत ने उनके सम्मान में एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया।

0: Albano che Thamadash Vincenzo Viva ne kaha.
1: Il fatto che Vostra Santità abbia trovato qui un luogo per il riposo settimanale, per la pausa estiva, ci onora e ci riempie di gratitudine.
0: संत पिता ने अपने पोप बनने के इस पहले अत्यंत व्यस्त एवं फलदायी वर्ष के दौरान अपने विश्राम के लिए कस्तिल गंदोल्फो को एक प्रिय एवं शांत स्थान के रूप में चुना है। यह एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां शांति, मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास एवं कला एक साथ मिलकर तन और मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पोप की उपस्थिति अल्बानो की स्थानीय कलीसिया और इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष एवं आनंद का कारण बनी है। इस पर पोप ने अपने संबोधन में दुनिया की वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा,
2: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose.
0: हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कभी-कभी सुंदरता की कमी महसूस होती है। ऐसे समय में एक साथ जमा होना वास्तव में एक महान उपहार है। उन्होंने कहा, युद्ध, संघर्ष, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और अनेक चुनौतियों से घिरी इस दुनिया में भी सुंदरता लोगों को एकजुट कर सकती है और उनके दिलों को आशा से भर सकती है। शनिवार शाम को कस्तिल गंदोल्फो स्थित प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप ने कहा कि ऐसे समय में एक साथ आना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की परेशानियों से बढ़कर भी कोई चीज है। जब लोग मिलकर एक साथ आने का चुनाव करते हैं तो वे उस सुंदरता को प्रकट करते हैं जो दिल से दिल तक पहुँचती है और हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाने में मदद करती है। पोप लियो चौधरी ने आगे कहा,
2: Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna.
0: जैसा कि आप जानते हैं, एक महीना पहले मैं स्पेन गया था। उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाना था। संगीत, कला एवं सुंदरता ऐसे माध्यम हैं जो हमें ईश्वर की ओर और मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। ये ऐसे साधन हैं जो जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर हमें सुंदरता का अनुभव कराते हैं। यही सुंदरता हमें ईश्वर के निकट ले जाती और हमारे भीतर नई आशा का संचार करती है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम का यह संगीत कार्यक्रम इसी अनुभव का सजीव उदाहरण था। वायलिन वादक मार्को रोलियानो, पियानो वादक रोसाना तोमासी गोलकर और संगीत निदेशक मैस्त्रो पियर कार्लो ओरिजियो ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो विंचेंसो बेलिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा पर आधारित था। अपने संबोधन में पोप लियो ने संगीतकारों एवं कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके संगीत ने मुझे गहराई से भाव विभोर कर दिया है। उन्होंने अल्बानो धर्म प्रांत के प्रति भी आभार जताते हुए कहा,
2: अल्लाह डायोसेसी दे अल्बानो के ऑफर्टो क्वेस्टो कॉन्चर्टो क्वेस्टो हरमोसो दोनो।
0: इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अनमोल उपहार है। सुंदरता से भरे इन क्षणों में हम सभी ने उस महान अनुभव को महसूस किया है जो हमें ईश्वर की सृष्टि के मूल उद्देश्य सुंदरता के और निकट ले जाता है। संगीत संध्या की शुरुआत अल्बानो धर्म प्रांत के बिशप विंचेंसो वीवा के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने पोप लियो चौदहवें का कस्तिल गंदोल्फो में पुनः आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय कलीसिया उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न एवं कृतज्ञ है। बिशप ने बतलाया कि इस संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य पोप के प्रति आभार व्यक्त करना और संगीत के इस अनमोल उपहार को सभी को बांटना। विंचेंसो वेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा का उल्लेख करते हुए बिशप वीबा ने उन महिलाओं एवं माताओं को भी याद किया जो दुनिया के विभिन्न युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपने बच्चों और परिवारों के साथ संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं महिलाओं में एक ऐसे भविष्य की आशा दिखाई देती है जो मेल मिलाप एवं शांति पर आधारित है। यह संदेश पोप लियो चौदहवें की उस शांति अपील को भी प्रतिध्वनित करता है जिसमें वे अपने पोप काल की शुरुआत से लगातार दोहराते आ रहे हैं। इस संगीत कार्यक्रम में 19वीं सदी के इटली के दो महान संगीतकारों निकोलो पागानिनी और विंचेंसो वेलिनी की रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया। दोनों कृतियों की मधुर एवं भावपूर्ण शैली ने वाद्य संगीत की उत्कृष्टता एवं ओपेरा की अभिव्यक्ति को एक अनूठे संगीत सफर में पिरो दिया। विशेषकर बेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा की पुनर्व्याख्या ने पियानो और ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इसकी नायिका की पीड़ा, क्षमा एवं आत्म बलिदान की यात्रा को जीवंत किया। इस प्रस्तुति ने एक व्यक्तिगत कहानी को प्रेम एवं शांति की शक्ति पर आधारित एक सार्वभौमिक संदेश में बदल दिया। संगीत कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक था कि युद्ध की विभीषिका के बीच भी सुंदरता एवं आशा की आवाज गूंज सकती है। कस्तिल गंदोल्फो की शांत फिजा से उठी यह आशा पूरी दुनिया तक पहुंचने का संदेश देती है। संगीत संध्या का समापन ऑर्केस्ट्रा के पीछे लगी स्क्रीन पर तारों से भरे आकाश के मनमोहक दृश्य के साथ हुआ। प्रस्तुति के बाद पोप लियो चौदहवें ने कलाकारों एवं उपस्थित लोगों से मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया एवं परंपरागत शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद प्रेरित आवास के प्रांगण से विदा हुए। श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरित आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप के संदेश एवं कला तथा सौंदर्य के महत्व के बारे में सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका में समर्पित पुरुषों के प्रमुख वरिष्ठों के सम्मेलन CMSM को भेजे एक पत्र में शुक्रिया अदा किया। यह 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी 70वीं सालगिरह मना रहा है, जो फीनिक्स परिजोना में 20 से 23 जुलाई तक हो रही है, जिसकी थीम है मसीह में आज का सामुदायिक जीवन। 26 जुलाई को लिखे इस पत्र में, जो सम्मेलन के कार्यकारी निदेशक फादर फ्रैंक डोनियो SAC को लिखा गया था, संत पापा ने कहा कि जब वे अमेरिका के पुरुष धर्म संघियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के 7 दशक पूरे कर रहे हैं, यह इन सालों में मिली कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सही समय है। संत पापा ने बातचीत के लिए जगह देने और अपने सदस्य समुदायों के नेताओं को सपोर्ट करने की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इससे मसीह को समर्पित और उनके उदाहरण पर चलने वाले समर्पित लोगों की सार्वजनिक गवाही को मजबूत करने में मदद मिली है। इस साल के सम्मेलन की थीम पर सोचते हुए संत पापा लियो ने कहा कि वह उन्हें सामुदायिक जीवन को पवित्रता की जगह अपने धर्म प्रचार में प्रेरणा, गवाही और ताकत का स्रोत मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, असल में यह सब कुछ एक साथ साझा करने से ही होता है, जिसमें भौतिक चीजें, आध्यात्मिक अनुभव, धर्म प्रचार के आदर्श और दान पुण्य की सेवा शामिल है, जिससे पुनर्जीवित प्रभु की छिपी हुई मौजूदगी आपके बीच जाहिर होती है। इस भावना के साथ संत पापा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सोच विचार, बातचीत और प्रार्थना के ये दिन आपको अपने धर्म समाज के अंदर और उनके बीच भाईचारे के मेल को गहरा करने के तरीके समझने में मदद करेंगे और इस तरह आप उन अलग अलग समुदायों और धर्म प्रचार में मसीह के लिए एक साथ खुशी से भरी और सच्ची गवाही देना जारी रख पाएंगे जहां आप सेवा करते हैं। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा 20 जुलाई सोमवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हुई। पूरे एशिया से 120 से ज्यादा कार्डिनल और धर्माध्यक्ष एक सप्ताह के लिए प्रार्थना, मनन चिंतन और पूरे महाद्वीप में कलीसिया के मिशन पर सोच विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। उद्घाटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोवा और दामन के महाधर्माध्यक्ष और FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राओ ने एशिया के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक के तौर पर रहने वाले क्रिश्चियों की स्थिति पर बातें की। उन्होंने कहा, अपने पूरे इतिहास में कलीसिया ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा कि डर से जवाब देने के बजाय कलीसिया रिश्ते बनाने, बातचीत को बढ़ावा देने और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई है। इस मिशन के लिए ख्रिस्तियों को लोगों, संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बनने की जरूरत है। संत पापा लियो 14वें के विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 21 जुलाई को एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा की शुरुआत की। उन्होंने सिनोडालिटी को दुनिया के लिए कलीसिया का सबसे बड़ा तोहफा बताया और एशिया की कलीसियाओं से बातचीत, मेल मिलाप और भाईचारे के जरिए शांति बनाने वाले बनने की अपील की। उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा कि कलीसिया का मिशन लोगों को एक साथ लाना, मेल मिलाप को बढ़ावा देना और शांति का जरिया बनना है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, हमारा मिशन पुल बनाने वाला बनना है। कलीसिया पुल बनाने के लिए बुलाई गई है। इस समारोह की एक और खास बात संतों की प्रार्थना थी, जिसमें पूरे एशिया के संतों का आह्वान किया गया। सभा ने चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस और अफगानिस्तान के संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना की, जिससे महाद्वीप की समृद्ध
क्रिस्तीय विरासत पर जोर दिया गया। उधर सैंडिनिस्ता क्रांति की 47वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए निकारागुआ के राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने घोषणा की कि अब कोई चुनाव नहीं होगा जो उनके विरोधियों को सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करने की अनुमति देगा। पहला संकेत गत वर्ष आया जब राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने कई संवैधानिक सुधार पेश किए, जिसमें दूसरे उपायों के साथ साथ अपनी पत्नी रोसारियो मुरिल्लो को उपराष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा दिया गया। 80 साल के राष्ट्रपति, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति बनने की पहली अवधि के बाद 2007 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि चुनाव औपचारिक रूप से कैसे खत्म किए जाएंगे। यह घोषणा अगले चुनाव से पहले हुई है जो नवंबर 2027 में होने वाली थी। उधर मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों के एक परिवार की मौत हो गई। यह पट्टी पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों में से सबसे नया है, जब से 9 महीने से ज्यादा पहले अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। माता पिता और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई जब वे सबरा इलाके में अपने घर में सो रहे थे। हमले में उनके घर में आग लग गई। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका निशाना हमास में एक मिलिटेंट था और वह अभी भी हमले के नतीजे की जांच कर रही है। फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मंगलवार को बाद में IDF ने मध्य गाजा पट्टी में एक और गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग मारे गए और दूसरे घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, बुधवार के कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत कला एवं सुंदरता के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
1: La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: संगीत कला एवं सुंदरता मनोरंजन के अच्छे माध्यम हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। ये हमें ईश्वर की ओर एवं मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कस्तिल गंदोल्फो में पोप लियो 14वें के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अल्बानो धर्म प्रांत ने उनके सम्मान में एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया।

0: Albano che da Madash Vincenzo Vivani kaha.
1: Il fatto che Vostra Santità abbia trovato qui un luogo per il riposo settimanale, per la pausa estiva, ci onora e ci riempie di gratitudine.
0: संत पिता ने अपने पोप बनने के इस पहले अत्यंत व्यस्त एवं फलदायी वर्ष के दौरान अपने विश्राम के लिए कस्तिल गंदोल्फो को एक प्रिय एवं शांत स्थान के रूप में चुना है। यह एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां शांति, मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास एवं कला एक साथ मिलकर तन और मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पोप की उपस्थिति अल्बानो के स्थानीय कलीसिया और इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष एवं आनंद का कारण बनी है। इस पर पोप ने अपने संबोधन में दुनिया की वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा,
2: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose.
0: हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कभी-कभी सुंदरता की कमी महसूस होती है। ऐसे समय में एक साथ जमा होना वास्तव में एक महान उपहार है। उन्होंने कहा, युद्ध, संघर्ष, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और अनेक चुनौतियों से घिरी इस दुनिया में भी सुंदरता लोगों को एकजुट कर सकती है और उनके दिलों को आशा से भर सकती है। शनिवार शाम को कस्तिल गंदोल्फो स्थित प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप ने कहा कि ऐसे समय में एक साथ आना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की परेशानियों से बढ़कर भी कोई चीज है। जब लोग मिलकर एक साथ आने का चुनाव करते हैं तो वे उस सुंदरता को प्रकट करते हैं जो दिल से दिल तक पहुँचती है और हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाने में मदद करती है। पोप लियो चौदवे ने आगे कहा,
2: Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna.
0: जैसा कि आप जानते हैं, एक महीना पहले मैं स्पेन गया था। उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाना था। संगीत, कला एवं सुंदरता ऐसे माध्यम हैं जो हमें ईश्वर की ओर और मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। ये ऐसे साधन हैं जो जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर हमें सुंदरता का अनुभव कराते हैं। यही सुंदरता हमें ईश्वर के निकट ले जाती और हमारे भीतर नई आशा का संचार करती है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम का यह संगीत कार्यक्रम इसी अनुभव का सजीव उदाहरण था। वायलिन वादक मार्को रोलियानो, पियानो वादक रोसाना तोमासी गोलकर और संगीत निदेशक मैस्त्रो पियर कार्लो ओरिजियो ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो विंचेंसो बेलिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा पर आधारित था। अपने संबोधन में पोप लियो ने संगीतकारों एवं कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके संगीत ने मुझे गहराई से भाव विभोर कर दिया है। उन्होंने अल्बानो धर्म प्रांत के प्रति भी आभार जताते हुए कहा,
2: Alla diocesi di Albano che ha offerto questo concerto, questo hermoso dono.
0: इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अनमोल उपहार है। सुंदरता से भरे इन क्षणों में हम सभी ने उस महान अनुभव को महसूस किया है जो हमें ईश्वर की सृष्टि के मूल उद्देश्य सुंदरता के और निकट ले जाता है। संगीत संध्या की शुरुआत अल्बानो धर्म प्रांत के बिशप विंचेंसो वीवा के स्वागत संबोधन से हुए। उन्होंने पोप लियो चौदवें का कस्तिल गंदोल्फो में पुनः आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय कलीसिया उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न एवं कृतज्ञ है। बिशप ने बतलाया कि इस संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य पोप के प्रति आभार व्यक्त करना और संगीत के इस अनमोल उपहार को सभी को बांटना। विंचेंसो वेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा का उल्लेख करते हुए बिशप वीबा ने उन महिलाओं एवं माताओं को भी याद किया जो दुनिया के विभिन्न युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपने बच्चों और परिवारों के साथ संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं महिलाओं में एक ऐसे भविष्य की आशा दिखाई देती है जो मेल मिलाप एवं शांति पर आधारित है। यह संदेश पोप लियो 14वें की उस शांति अपील को भी प्रतिध्वनित करता है जिसमें वे अपने पोप काल की शुरुआत से लगातार दोहराते आ रहे हैं। इस संगीत कार्यक्रम में 19वीं सदी के इटली के दो महान संगीतकारों निकोलो पागानिनी और विंचेंसो वेलिनी की रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया। दोनों कृतियों की मधुर एवं भावपूर्ण शैली ने वाद्य संगीत की उत्कृष्टता एवं ओपेरा की अभिव्यक्ति को एक अनूठे संगीत सफर में पिरो दिया। विशेषकर बेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा की पुनर्व्याख्या ने पियानो और ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इसकी नायिका की पीड़ा, क्षमा एवं आत्म बलिदान की यात्रा को जीवंत किया। इस प्रस्तुति ने एक व्यक्तिगत कहानी को प्रेम एवं शांति की शक्ति पर आधारित एक सार्वभौमिक संदेश में बदल दिया। संगीत कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक था कि युद्ध की विभीषिका के बीच भी सुंदरता एवं आशा की आवाज गूंज सकती है। कस्तिल गंदोल्फो की शांत फिजा से उठी यह आशा पूरी दुनिया तक पहुंचने का संदेश देती है। संगीत संध्या का समापन ऑर्केस्ट्रा के पीछे लगी स्क्रीन पर तारों से भरे आकाश के मनमोहक दृश्य के साथ हुआ। प्रस्तुति के बाद पोप लियो 14वें ने कलाकारों एवं उपस्थित लोगों से मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया एवं परंपरागत शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद प्रेरितिक आवास के प्रांगण से विदा हुए। श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप के संदेश एवं कला तथा सौंदर्य के महत्व के बारे में सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका में समर्पित पुरुषों के प्रमुख वरिष्ठों के सम्मेलन CMSM को भेजे एक पत्र में शुक्रिया अदा किया। यह 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी 70वीं सालगिरह मना रहा है, जो फीनिक्स परिजोना में 20 से 23 जुलाई तक हो रही है, जिसकी थीम है मसीह में आज का सामुदायिक जीवन। 26 जुलाई को लिखे इस पत्र में, जो सम्मेलन के कार्यकारी निदेशक फादर फ्रैंक डोनियो SAC को लिखा गया था, संत पापा ने कहा कि जब वे अमेरिका के पुरुष धर्म संघियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के 7 दशक पूरे कर रहे हैं, यह इन सालों में मिली कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सही समय है। संत पापा ने बातचीत के लिए जगह देने और अपने सदस्य समुदायों के नेताओं को सपोर्ट करने की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इससे मसीह को समर्पित और उनके उदाहरण पर चलने वाले समर्पित लोगों की सार्वजनिक गवाही को मजबूत करने में मदद मिली है। इस साल के सम्मेलन की थीम पर सोचते हुए संत पापा लियो ने कहा कि वह उन्हें सामुदायिक जीवन को पवित्रता की जगह अपने धर्म प्रचार में प्रेरणा, गवाही और ताकत का स्रोत मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, असल में यह सब कुछ एक साथ साझा करने से ही होता है, जिसमें भौतिक चीजें, आध्यात्मिक अनुभव, धर्म प्रचार के आदर्श और दान पुण्य की सेवा शामिल है, जिससे पुनर्जीवित प्रभु की छिपी हुई मौजूदगी आपके बीच जाहिर होती है। इस भावना के साथ संत पापा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सोच विचार, बातचीत और प्रार्थना के ये दिन आपको अपने धर्म समाज के अंदर और उनके बीच भाईचारे के मेल को गहरा करने के तरीके समझने में मदद करेंगे और इस तरह आप उन अलग अलग समुदायों और धर्म प्रचार में मसीह के लिए एक साथ खुशी से भरी और सच्ची गवाही देना जारी रख पाएंगे जहां आप सेवा करते हैं। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा 20 जुलाई सोमवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हुई। पूरे एशिया से 120 से ज्यादा कार्डिनल और धर्माध्यक्ष एक सप्ताह के लिए प्रार्थना, मनन चिंतन और पूरे महाद्वीप में कलीसिया के मिशन पर सोच विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। उद्घाटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोवा और दामन के महाधर्माध्यक्ष और FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राओ ने एशिया के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक के तौर पर रहने वाले ख्रिस्तियों की स्थिति पर बातें की। उन्होंने कहा, अपने पूरे इतिहास में कलीसिया ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा कि डर से जवाब देने के बजाय कलीसिया रिश्ते बनाने, बातचीत को बढ़ावा देने और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई है। इस मिशन के लिए ख्रिस्तियों को लोगों, संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बनने की जरूरत है। संत पापा लियो 14वें के विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 21 जुलाई को एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा की शुरुआत की। उन्होंने सिनोडालिटी को दुनिया के लिए कलीसिया का सबसे बड़ा तोहफा बताया और एशिया की कलीसियाओं से बातचीत, मेल मिलाप और भाईचारे के जरिए शांति बनाने वाले बनने की अपील की। उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा कि कलीसिया का मिशन लोगों को एक साथ लाना, मेल मिलाप को बढ़ावा देना और शांति का जरिया बनना है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, हमारा मिशन पुल बनाने वाला बनना है। कलीसिया पुल बनाने के लिए बुलाई गई है। इस समारोह की एक और खास बात संतों की प्रार्थना थी, जिसमें पूरे एशिया के संतों का आह्वान किया गया। सभा ने चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस और अफगानिस्तान के संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना की, जिससे महाद्वीप की समृद्ध
क्रिस्तीय विरासत पर जोर दिया गया। उधर सांदिनिस्ता क्रांति की 47वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए निकारागुआ के राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने घोषणा की कि अब कोई चुनाव नहीं होगा जो उनके विरोधियों को सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करने की अनुमति देगा। पहला संकेत गत वर्ष आया जब राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने कई संवैधानिक सुधार पेश किए, जिसमें दूसरे उपायों के साथ साथ अपनी पत्नी रोसारियो मुरिल्लो को उपराष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा दिया गया। 80 साल के राष्ट्रपति, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति बनने की पहली अवधि के बाद 2007 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि चुनाव औपचारिक रूप से कैसे खत्म किए जाएंगे। यह घोषणा अगले चुनाव से पहले हुई है, जो नवंबर 2027 में होने वाली थी। उधर मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों के एक परिवार की मौत हो गई। यह पट्टी पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों में से सबसे नया है, जब से 9 महीने से ज्यादा पहले अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। माता पिता और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई जब वे सबरा इलाके में अपने घर में सो रहे थे। हमले में उनके घर में आग लग गई। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका निशाना हमास में एक मिलिटेंट था और वह अभी भी हमले के नतीजे की जांच कर रही है। फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मंगलवार को बाद में IDF ने मध्य गाजा पट्टी में एक और गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग मारे गए और दूसरे घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।